0: मंगळवारी रात्री 9 वाजता आणि पुन्हा प्रसारण दर शुक्रवारी रात्री 10 वाजता फक्त रेडिओ नगर 90.4 FM वर.
1: नमस्कार, मैं हूं मजिशन आंचल और आप सुन रहे हैं रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा.

0: पीजिए सरकार।
1: फाइनल थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

उपाध्याय भगवत धर्म मंच पर बधा रहे हैं। सभी गुरुदेव के स्वागत के लिए खड़े रह जाएंगे।

0: जो जो आगे की चेयर खड़े करके बैठे हैं उठ जाए, अपने आगे की चेयर खाली है अपन पीछे बैठे हैं ऐसे भाई बहन उठ जाए। आगे की चेयर खाली रहकर के पीछे किसी ने बैठना है, उठ जाए जल्दी से। इधर के बहने भी अगले दो नंबर की लाइन पूरी खाली है और तीसरे नंबर की लाइन बैठे हैं। शांत बहनों को सुनने के पचकान होंगे क्योंकि वह सीनियर है और सीनियर को ऐसे भी सुनना कम देता है और मानना तो उसे भी मुश्किल होता है। हाँ जी, आप आगे आइए, आगे बस आप चेयर भर लीजिए, वो जहां जहां चेयर खाली है भर लीजिए क्योंकि उनको उठने के पचकान होंगे। इधर में अभी भी भाई लोग अपने आगे की चेयर खाली रखकर के पीछे बैठे हैं, आगे की चेयर खाली रखकर के भाई बैठे हैं, मुझे वहां आना पड़ेगा क्या आपको उठाने के लिए? यहाँ का प्रोटोकॉल रहेगा पूरी धर्म सभा का, आगे की चेयर खाली रख करके पीछे नहीं बैठना। जल्दी से अभी भी आगे की चेयर खाली है, फर्स्ट लाइन की चेयर खाली है।
1: सेंट्रल बेंगलोर सी संघ के अध्यक्ष अशोक जी राका, महेंद्र जी मुनोत और अशोक जी राका, महेंद्र जी मुनोत, सुरेश जी, शोभा देवी संगड़िया आए हुए हैं, तो उनको मैं दो मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं, वे अपनी भावनाएं व्यक्त करें।
2: महावीर स्वामी के चरण कमलों में वंदन। अर्थ विराजित उपाधि भवन श्री प्रवीण ऋषि जी मुरादाबादी थाना के चरण कमलों में हम सब की तरफ से श्रद्धा पूर्व नमन वंदन। उपस्थित धर्मप्रेमी बंधुओं, बैंगलोर से हम बैंगलोर सेंट्रल संघ जो नवनिर्मित है, अभी तीन साल पहले गठित हुआ बैंगलोर सेंट्रल संघ बसनगुड़ी विवीपुरम क्षेत्र से आए हैं। गुरुदेव के चरणों में जब भी दक्षिण का चतुर्मास होगा, चेन्नई से जब आए थे उन्होंने कहा था कि साथ में आने के लिए, तो हमने कहा कि हमारा संघ पहले से ही हमने प्लान कर लिया है आज के लिए, तो उस दिन नहीं आ सके हम 13 तारीख को, आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दक्षिण में जब भी चतुर्मास होगा हमारी विनती है कि बैंगलोर में भी आप अवश्य पधारे। पहले भी चतुर्मास हो चुका है, ऐतिहासिक चतुर्मास, इस बार भी जब भी दक्षिण पधारे बैंगलोर का भी सुनहरा अवसर मिले और हमारा संघ की तरफ से भी पधारे हुए सभी खड़े रहे, बैंगलोर सेंट्रल संघ की तरफ से भी हम विनती रख रहे हैं, पूरे बैंगलोर वासियों की तरफ से चतुर्मास होगा एक समिति बना के। तो ज्ञानू भाई लोड़ा से बात हुई, दोनों ने कहा कि मैंने रख दिया, आप भी वहां पर जब जाए विनती हमारी तरफ से रख देना। तो अशोक जी रांगा भी बता चुके हमारे अध्यक्ष जी, सभी की तरफ से हम आपके चरणों में विनती रख रहे हैं, दक्षिण में जब भी पधारे हमारी विनती को स्वीकार करें। धन्यवाद।
0: ओके।

他这个也饥饿，饥饿不能把我妈送死我，那就让弄得我苦。给弄得不给我讲干什么？我现在都不讲的，我弄得也讲的，我现在都不讲的。我现在拿下包天里给你的，你给弄得不讲。ऐसे नौ तत्वों का जानना इसलिए जरूरी है कि ये नौ तत्वों को समझोगे जानोगे तो इसका उपयोग कर सकोगे। आपको नहीं पता है, मैं भी थोड़ा सा जानता हूं। हमारे सारे दादा और दादियों के हाथों में स्मार्टफोन होते हैं। ये सुनो, उसके कितने फीचर उनको पता होते हैं। तो स्मार्टफोन होने से फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं, और जिसके पास जिसको पता है उसके पूरे फीचर्स का यूज कैसे करना, वो तो स्मार्टफोन का पूरा उपयोग कर सकता है। बाकी हमारे दादा दादी को तो स्विच ऑफ कैसे करना वो भी पता नहीं होता है। और फिर वो प्रॉब्लम कर जाता है, वो पता हूं कि ना होगा। जीवन में यदि तुमको विजेता बनना है, जीवन में भी तुमको सक्सेस होना है, तो तुम विजेता बन सकते हो केवल दो शक्ति के बल पर। दो ही शक्तियां तुमको विजेता बना सकती है। एक तुम्हारे स्वयं की श्रद्धा की शक्ति, और तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की शक्ति। शक्तियों के अलावा इस विश्व में कोई विजेता हो ही नहीं सकता है। एक की शक्ति जागृत करनी है और एक की शक्ति ग्रहण करनी है। ध्यान में रखना है, तीर्थंकर परमात्मा भी जिसमें दीक्षा लेते हैं दो काम एक साथ करते हैं, अपनी शक्ति का जागरण करते हैं। नमो सिद्धानम सिद्धा सिद्धि मन विसंतु के माध्यम से अनंत सिद्ध भगवंतों की शक्ति को ग्रहण करते हैं। सिद्धानम नमो किंचन, शरीर ही है, तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य लेकर के आए, साधना के मार्ग पर कदम धर रहे हैं। लेकिन सिद्धि तभी पाते हैं जब सिद्धत्व की शक्ति को ग्रहण करते हैं। बेहतर होने के लिए तीर्थंकर की शक्ति लगती है, और सिद्ध होने के लिए सिद्ध की शक्ति लगती है। और यह शक्ति तुम तभी ग्रहण कर सकते हो, नौकर मंत्र बोलकर के ग्रहण नहीं कर सकते हो। जिससे तुम्हारे अंदर की श्रद्धा और ज्ञान की शक्ति ग्रहण करने में समर्थ होगी तभी ग्रहण कर सकोगे। मैं बहुत बार उदाहरण देते रहता हूं, एग्जाम्पल देते रहता हूं, रिपीटेडली देते रहता हूं। अगला गेट मत ले जा, अगला गेट मत ले जा, अगला गेट मत तो जगह एंट्री करे ना। मैंने क्यों, बाजार में नहीं आ रहा, मॉल में नहीं आ रहा हो, धर्म सभा का उठो जा रहा है, मौन से आओ अंदर। और मुझे उन सभाओं को संबोधित करना है कि जिनको धर्म
सभा में कैसे प्रवेश करना वो भी सिखाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही चले आते जैसे मानो कि हम मॉल में एंट्री कर रहे हैं, पांच आवेदन अपने सीखे ही नहीं कि धर्म सभा में प्रवेश कैसे करना। और जिसको प्रवेश करने की स्किल नहीं आई वो मंदिर में जाकर के भी परमात्मा को मिल नहीं सकता है, गुरु के चरणों में जाकर के भी गुरु को मिल नहीं सकता है। एंट्री की स्किल आनी चाहिए। इंद्र भी परमात्मा के पास आते हैं तो सीधा प्रवेश नहीं करते हैं, पहले प्रदक्षिणा करते हैं। अयाहीनम पयाहीनम करी करीता, तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं और फिर प्रवेश करते हैं धर्म सभा में। तभी वो तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा दे पाते हैं। तुम्हें भाग कर रहे थे आपके साथ अर्जुन माली और सुदर्शन की, आपके जीवन में अर्जुन माने तो कब आएगा पता नहीं, लेकिन रोज आपको दूसरों के आक्षेप तो झेलने ही पड़ते हैं, टॉन्ट तो झेलने ही पड़ते हैं। और देने वाला टॉन्ट कसने वाला निकल जाता है और सुनने वाला उसको कैरी करते रहता है। ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हो क्या? अर्जुन माने जी ने बहुत दिया लेकिन सुदर्शन के पास कुछ नहीं पहुंचे। शस्त्र तो पहुंचा ही नहीं लेकिन अर्जुन माने के जो भयंकर नजर थी वो भी नहीं पहुंच पाई। शस्त्र की बात बाद में करता, अर्जुन माने के इस पास जो हिंसा थी, जो आक्रोश था, जो भय था, जो उसके खूनी अंगार बरसाती आंखें थी, उन आंखों से निकलने वाली ऊर्जा भी सुदर्शन के पास पहुंच नहीं सकी। मेरी बहन को बोलने के लिए इसलिए रोका कि अभी बात बोल रही थी। तीर्थंकर की शक्ति ग्रहण करनी हो तो उसकी पहली शर्त है सौवर। क्या शर्त है? सौवर कि मेरे मन वचन काया में पाप का आश्रय नहीं हो। अरे संवर कैसे करना वो आपको सीखना है। मेरे अंदर वो वाइब्रेशन वो एनर्जी एंट्री ही नहीं करेगी। मास्क लगाते हो? कोविड मास्क लगाया था ना? लगाया था। किसने लगाया था? कि वायरस अंदर नहीं आ जाए, वायरस अंदर नहीं आ जाए। वैसे अपनी आत्मा को मास्क लगाना, ऐसे अपने कार्बन शरीर को, तेजस शरीर को, औदारिक शरीर को मास्क लगाना कि बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी एंट्री न कर पाए, उसको सोवर कहते हैं। कोई अशुभ एनर्जी एंट्री नहीं कर पाए। शर्त होती है और जब बुरी एनर्जी एंट्री नहीं करेगी तब तीर्थंकर और सिद्ध के लिए दरवाजे खोलोगे तो एनर्जी एंट्री कर जाएगी। इसका सूत्र है
तीर्थंकर की शक्ति और सिद्ध परमात्मा की शक्ति, पंच परमेश्वर की शक्ति हम ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? ग्रहण करने की सबकी इच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि जब आप दर्शन को आते हो तो सभी की एक ही भावना होती कि हमको संतों की कृपा मिलनी चाहिए। हेलो, यस और नो? यस और नो? लेकिन कृपा कैसे ग्रहण करनी है इसकी कला कभी सीखी क्या? अभी तो कला क्या, अभी तो केवल एक ही कला ही है, किंतु देने की। दर्शन की तरफ फोकस कम रहता है, लेने के लिए फोकस कम रहता है, ज्यादा रहता है। वो छोटे बच्चे को दर्शन कराते हैं, छोटे बच्चे का दर्शन करना पर्याप्त नहीं होता, नरसा उन्हें फूटे उन्हें धक्का जाते हैं, स्वयं तो बिगड़े बिगड़े बच्चे को भी बिगाड़ रहे। क्या ग्रहण करने आए तो? फोटो ग्रहण करने के लिए आए कि कृपा ग्रहण करने के लिए आए? और फिर कहते कि कुछ नहीं हुए, कैसे होगा, कैसे होगा? चंद कौशिक पर भी तीर्थंकर महावीर ने कृपा बरसाई, चंद कौशिक पर भी बरसाई, कौशिक ग्रहण कर गया गोशालक, यूज कर गया, ग्रहण नहीं कर पाया, साथ में जी लिया लेकिन ले कुछ नहीं पाया। चंद कौशिक को तो तीर्थंकर महावीर का सानिध्य मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट मिला हुआ, उसने ऐसा परमात्मा का आश्रय किया, ऐसा आश्रय किया, ऐसा आश्रय किया कि वापस भूखी नहीं लगी, भूखी नहीं लगी, प्यासी नहीं लगी। और उसका सूत्र केवल इतना ही है कि उसने ग्रहण किया और बाकी सब ग्रहण करना बंद कर दिया। उसने आश्रय किया, बाद में संवर किया, सुदर्शन ने संवर पहले किया और आश्रय बाद में किया, चंद्रकौशिक ने आश्रय पहले किया और संवर बाद में किया। ये प्रक्रिया सीखनी है, यदि चंद्रकौशिक कर सकता है तो चंद्रकौशिक से गया भी था तो यहां पर कोई भी नहीं, मैं तो नहीं हूं। चंद्रकौशिक से गया भी था बोले आप कोई नहीं, केवल वो स्किल डेवलप करनी, कैसे ग्रहण करता है ये मांगने से नहीं मिलता, बोलो, ये मांगने से, ये लेने से मिलता है। और आपको क्या सिखाया गया है? देख कभी देरे कंठा कर, देरे मणिभद्र, देरे शनि सिग्नापुर, देरे बालाजी, देरे संतोषी माता, देरे भैरव भवानी, देरे नाकोड़ा, ना, ना। ऋषि की भूमिका बिल्कुल क्लियर है। तरुण ऋषि किसी को यंत्र मंत्र तंत्र टोटका देता ही नहीं है। प्रबंध ऋषि ना तुम्हारा पत्रिका देखता है, ना तुम्हारा हाथ देखता है, प्रबंध ऋषि के पास है तो केवल
जिनेश्वर है, गुरुदेव है और जिनेश्वर की वाणी है, उसके अलावा तो नथिंग, कुछ भी नहीं। जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं, लेने की कला है। किसकी कला बोलो? लेने की कला है। और लेने की कला को आश्रय कहते हैं, लेने की कला को आश्रय कहते हैं। और वो कला आपको सीखनी है, कैसे लेना। एक मधुमक्खी के पास कला है मधु लेने की, और मुझे नहीं लगता कि एक फूल से मधुमक्खी के अलावा किसी को मधु मिलता होगा। उसी फूल पर तितली भी जाकर बैठती है, उसी फूल पर भवरा भी जाकर के बैठता है, उसी फूल पर मकोड़ा भी चढ़ता है, चींटियां भी चढ़ती है, चिड़िया भी बैठती है, सब बैठती है। लेकिन वहां से मत किसको मिलता है? मिलता है कि वो लेती है, वो लेती है, वो लेने की कला है। और क्या कहूं आपसे, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। प्रवीण ऋषि अब तक बन नहीं पाया, लेकिन तीर्थंकर महावीर ने और गुरुदेव ने अपने साधु और साध्वी को मधुमक्खी बनने के लिए कहा। क्या बनने के लिए कहा?

तीर्थंकर महावीर तो कहते हैं जो मधुमक्खी बनता है वही साधु है, जो मधुमक्खी नहीं बनता है वो साधु ही नहीं। तेरा वचन थी साहुनो, सपना देखते रहिए, कल्पना करो, कल्पना करो जिन शासन के सारे साधु साधी मधुमक्खी बन जाए तो जैन समाज को कितना शहद मिलेगा। हेलो है? और कहीं शहद मिलने के लिए जाना पड़ेगा? मेरे गोदा फरमाते थे तीन प्रकार की मक्खियां होती है, एक गंदगी पर बैठने वाली मक्खी, एक डंख मारने वाली मक्खी और एक शहद को लेने वाली मक्खी। तीनों ही आश्रय करती है, तीनों ही आश्रय करती है। गंदगी पर बैठने वाली मक्खी भी आश्रय करती है, किसका? गंदगी का। डंख मारने वाली मक्खी भी आपके शरीर में से आश्रय करती है, खून का। और साथ में आपको भी आश्रय करा देती है जहर का, आपका खून लेती है और आपको जहर देती है। बोले और एक एग्जांपल देते थे, जो शहर में रहने वाले लोगों को कितना समझ में आएगा पता नहीं। गाय के जो दूध के स्तन होते हैं उस पर एक जीव भी रहता है, वहां पर गोचिर, क्या कहते उसको, गोचिर। उसी स्तन में से वो क्या लेता है? खून। दूध नहीं ले पाता है वो गोचिर, जहां दूध ले सकता वहां से वो क्या लेता है? खून लेता है। और वहीं से बछड़ा क्या लेता है? दूध लेता है। अब वहां दूध है नहीं कि उसको लेते नहीं आता है। हेलो, उसको लेते नहीं आता कि लेने की इच्छा ही नहीं है? हेलो, अब हम क्लियर करते जा रहे हैं, आपके लेने की इच्छा है, लेने की स्किल नहीं। आपकी भावना पर मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन करें क्या? मैं सबकी क्षमा मांगते हुए बोल रहा हूं, आपको वंदना करनी सिखाई किसी ने? हेलो, खाना बोलो ना कि तो नहीं, त्रिकुत्व का पाठ सिखाया है, वंदन की विधि नहीं सिखाई। बिना वंदन विधि के कल्याणम मंगलम देवयम चयन की अनुभूति आ ही नहीं सकती।

रक्षा करनी होती है। वस्त्र कैसे करना, सुगुण कैसे करना, आया हुआ कचरा निकालना कैसे, और जो आश्रम किया है, जो आश्रम किया है उसको स्टोर कैसे करना, उसको क्या कहते बंद, उसके साथ बन जाना। आप प्रवचन सुनते हो, प्रवचन का आश्रम आपके अंदर होता है, लेकिन प्रवचन का बंद होता है क्या? हेलो, बंद किसका होता है? यहां पर कोई आप पर गुस्सा करे, गुस्सा उसने किया मतलब आश्रम हो गया आपने, उस आश्रम का बंद करते कि नहीं करते आप, उसको होल्ड करते कि नहीं करते, उसको स्टोर करते कि नहीं करते, जल्दी जल्दी बोलो ना, करते। यानी क्या करते आप? गुस्से का बंद कर दे, प्रवचन का बंद नहीं होता है, मोरल पाठ का बंद नहीं होता है। मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे, मंगल पाठ श्रवण करने के बाद 2 मिनट भी आपके पास मंगल नहीं रहता है, दूसरे मिनट में मंगल शुरू हो जाती है। मंगल तो लिया लेकिन मंगल को पकड़ा नहीं, ग्रहण तो किया लेकिन होल्ड किया नहीं। फिर जिसका बंद नहीं होता उसका फल नहीं मिलता। बोलो जल्दी से, जिसका बंद नहीं होता उसका फल नहीं मिलता, जिसका बंद होता है उसका फल मिले बिना रहता नहीं। आश्रों का फल नहीं मिलता, आश्रों का फल नहीं मिलता, फल किसका मिलता है? बंद का। आपकी भाषा बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कंस्ट्रक्शन करने का रॉ मटेरियल सारा आकर के पड़ा है, रॉ मटेरियल सारा सीमेंट पानी खड़ी ऑल स्टील सब आया, क्या बन जाएगा? कब बनेगा? कंस्ट्रक्शन करोगे तो घर बनेगा। आश्रम मैंने क्या रॉ मटेरियल आकर के पड़ा है, रॉ मटेरियल आकर के पड़ा है लेकिन कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं। अब कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो रॉ मटेरियल, हेलो, काम में नहीं प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम करता है। और आप किसका कंस्ट्रक्शन करते हो? आपसे पूछता हूं, आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं कि असफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं। और कंस्ट्रक्शन किसका करते हैं आप? होल्ड किसको करते हैं? जो तुम्हें सफलता मिली है उसको तुमने होल्ड किया है कि जो असफलता मिली है उसको होल्ड किया है? रात को सोते समय जो जो काम आज जिंदगी में हुए वो याद आते हैं कि जो काम नहीं हुए वो याद आते हैं? हेलो, जिससे सहयोग मिला उसकी याद आती है कि जिसने विरोध किया उसकी याद आती है? जिसने, तो आप किसका किसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन किसका कर रहे हैं? विरोध का कर रहे हैं कि सहयोग का कर रहे हैं? फिर फल किसका आएगा? लेकिन आज बता रहा हूं आपको, नौ तत्व आपको क्या सिखाएंगे। यदि मैंने विरोध का बंध किया है तो उसको फल किसका लगेगा? अनुरोध का। अरे विरोध का बंध करूंगा तो फल भी विरोध का ही लगेगा, और अनुरोध का बंध किया तो फल भी अनुरोध का लगेगा। ये बंध आश्रम नहीं, मत आश्रम करना क्या बंद। मैं बांधता किसको? मैं कंस्ट्रक्शन किसका करता?
वैसा अलग का आश्रय हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। चंद्रकोशी का आश्रय भी हुआ और कंस्ट्रक्शन भी हो गया। नौ तत्व है और इसकी क्रियाएं सीखनी, कैसे आश्रय करना है, कैसे जो आश्रय हुआ उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। फिलोसॉफी नहीं बताई नौकर कनिष्क के अनुष्ठान में, लेकिन उनको आश्रय कैसे करना सिखा के आया हूं, बंध कैसे करना सिखा के आया हूं। उनको बताया नहीं आश्रय है, समर है, बंध है, उनको कोई सिखाया नहीं, लेकिन प्रक्रिया सिखा करके आया हूं। और मुझे पता है बिना नॉलेज के भी, बिना नॉलेज के भी क्रिया हो जाए तो फल आते हैं। हेलो, मेरी बात समझ में आई नहीं आपके? बिना नॉलेज के भी परफेक्ट क्रिया हो जाए, पहला शौक कम बैठा हो तो अगला शौक दे देता हूं। बिना श्रद्धा के, बिना श्रद्धा के भी क्रिया परफेक्ट हो जाए तो बंद हो जाता।
ऐसी कौन सी जगह है कि जहां तीर्थंकर की ऊर्जा नहीं पहुंचती? अरे लोगस्य उज्जव करे, क्या बोलते हो? लोगस्य जो पूरे लोक में उजाला करते हैं, तो तीर्थंकर का प्रकाश है, ऐसी जगह कौन सी है? कोई है? हेलो, जो ग्रहण कर ले उसके लिए हर जगह सिद्ध क्षेत्र है, और ऐसी एक भी जगह नहीं है कि जहां से सैकड़ों जीव नरक में नहीं गए। आप जहां बैठे हो ना, अब नहीं आसर किसका होगा? जिसके प्रति तुम ओपन होंगे वो ग्रहण होगा। अभी उत्तर को समेट रहा हूं, मेरा टाइम हो गया है। लोग कहते हैं मासल घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, है ना? और क्या तुम्हारे है ना, किचन बराबर नहीं है, घर का दरवाजा बराबर नहीं है, इसलिए मैं तत्व को बता रहा हूं। चिचुंडी का तीर्थ गुरु की जन्मभूमि पर तीर्थ हो रहा है ना, उस समय शुरुआत के समय में कई साधु साधु यहां पर आए थे, और हम देखा उसको, और देखने के बाद पूरा समीक्षण करने के बाद मेरे पास आए और मुझे कहा यहां पर पहले एक क्षेत्रपाल देवता की स्थापना होनी चाहिए। पहला सुझाव दिया, दूसरा सुझाव दिया कि ये वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशा बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहमान थे, उनके साथ कहा डिबेट करो, मुस्कुरा करके छोड़ दिया। वो कहने लगे कि मेरे साहब ने बहुत इसको थोड़ा चेंज करिए ना। तो फिर मैंने उनको कहा कम कम पर सिद्ध की नजर है। क्या? कम कम पर सिद्ध की नजर है, कम कम पर तीर्थंकर की नजर है, और जहां तीर्थंकर की नजर है वहां सब तीर्थ ही तीर्थ है। और जहां तीर्थंकर की नजर है और मुद्रे पानी भी कुछ नहीं कर सकता है, तो बाकी किसी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, नहीं। दूसरी आम बात बताऊं आपको, जो भी वहां कार्यक्रम शुरू हुए वो पंचांग देख करके शुरू ही नहीं हुए। किसी ब्राह्मण को पूछा नहीं, मैं किसी ज्योतिष को पूछा कि कौन सा दिन शुरू है, किस दिन शुरू करो। हेलो, चौबड़े भी नहीं कहा, और चौबड़े तो मुझे याद भी नहीं है, जो मैं देखता नहीं उसको मुझे याद रखने कोई कारण ही नहीं। आपको नगर प्रवेश की बात करो, मैंने डेट बताई, तिथि और वार मुझे कुछ भी पता नहीं। मैंने इस तारीख को चौमासा बैठ रहा है, उसके चार दिन पहले प्रवेश करना है, विषय समाप्त। क्यों, क्या कारण? चतारी मंगलम मरियंतांगलम सिद्धांगलम साहु मंगलम केवलिम पन्नतोत मंगलम चतारी लघुतमा हरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवलिम पन्नतोदम्बु लघुतमा चत्तारे सनम भवज्जामि हरिहंते सनम भवज्जामि सिद्धे सनम भवज्जामि साहु सनम भवज्जामि केवली।

0: मुझे प्रेम बहुत है, लेकिन मैं उनको केवल याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 में जब मैंने वहां से विहार किया था तब मैंने बोल करके विहार किया था, नो रिटर्न। बराबर अशोक जी, क्या बोला था मैंने कि आखिरी बार की मुलाकात थी, चेन्नई भी वही कहकर के आया हूं, बेंगलोर भी वही कहकर के आया हूं, इंदौर भी वही कहकर के आया हूं, रायपुर भी वही कहकर के आया हूं, पूना भी वही कहकर के आया हूं, संभाजी नगर भी वही कहकर के आया हूं। अब आपकी आने की बारी है।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषीजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आत्ताच आपण ऐकलात।
2: स्नेहालय पुनर्वसन संकुल, लालबत्ती भागातील महिलांची निराधार मुले, HIV एड्स बाधित मुले व मुली आणि झोपडपट्टीतील वंचित बालकांसाठी हक्काचे संकुल म्हणजेच स्नेहालय पुनर्वसन संकुल। आजपर्यंत अनेक लाभार्थ्यांनी या संकुलाचा लाभ घेतला आहे, तुम्ही देखील या संकुलाला भेट देऊ शकता। संपर्क क्रमांक आहे 90110011005। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 FM, आवाज तुमचा।